लफ्जों से कुछ नमी लेकर हम आज रात मुसल्ला बिछा के रोएंगे, हम आज रात मुसल्ला बिछा के रोएंगे।

इस ख्याल से अश्कों का बंद टूटा है। तुम्हारी गोद में चेहरा छुपा के रोएंगे, तुम्हारे गैब का पर्दा हिला के रोएंगे। यतीम देते हैं आवाज हाज कासिम को, ज़मीने कुछ पे उड़ती है खाक, आ जाओ। चराग उजड़े घरों में जला के रोएंगे, खुदा के सामने हम गिड़गिड़ा के रोएंगे।

जाते, उनसे मुलाकात के लिए जाते, एक स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलती थी इस बड़े आलिम दीन के वजूद बाबरकत से। हम मरूम हो गए, आपके साये से अल्लाह तबारक व तआला आपको गरीक रहमत फरमाए और आपके बताए हुए रास्ते पर चलने के हमें तौफीक अता फरमाए। आपका यह मशहूर जुमला है जब आपके बाद शागिर्दों ने कहा कि भाई सारी दुनिया ज़्यारत पर जा रही है, क्या ज़्यारत पर जाना मुस्तहब नहीं है, कि आपको न देखा नहीं है हमने ज़्यादा ज़्यारत पर जाते हुए। आपने फरमा क्यों नहीं, ज़्यारत पर जाना मुस्तहब है, ज़रूरी है, जाया करो, इसलिए कि वो मरकज़ है, मरकज़ से जो नूर मिलता है वो नूर और है। और उसके बाद का जुमला जो आपने फरमाया, मैंने आपकी खिदमत में पेश किया, कभी कभार अपने इरफान को इतना बुलंद करो कि ज़माना ज़मान और मकान तुम्हारी निगाहों के सामने ना रहे। रुख करो करबला का तो फिर ये दीवार तुम्हारे आड़ ना बने, तुम इमाम के रोज़े को दूर रहकर भी देख सको। ये वो दिल है, अब पता नहीं उन्होंने एक जुमला कह दिया, मैंने सुना दिया, आप उनकी क्या हालत थी अल्लाह जाने। कभी कभार इंसान दूर से खड़े होकर ऐसी ज़ियारत करता है, ऐसा लगता है कि वो ज़ियारत में मौजूद है, वो ज़ियारत में जा चुका है। वो तसव्वुर, वो इरफान, वो मानवियत इंसान के अंदर होना चाहिए। वो मानवियत अगर आ जाए तो बंदा अपने आप को कनेक्ट करने में कामयाब हो जाता है, आखिरी इमाम से कनेक्ट करने में कामयाब हो जाता है। नहीं तो एक ज़ियारत का उन्वान है, दूर से रहकर ज़ियारत करता है बंदा, एक मानवी सिफात स्पिरिचुअल स्टेटस इंसान का बुलंद होना चाहिए, बुलंद होना चाहिए। कभी कभार मकाम इंसान हासिल कर लाता है, मकाम के साथ साथ हाल भी हासिल करे, पता नहीं मेरे पास वक्त नहीं, इसके तौज़ वज़ात में जाऊँ, मकाम हासिल करे, मकाम के साथ साथ हाल हासिल करे। कहते जिक्र यूनुसिया, जो पढ़ेगा वो नजात पा जाएगा। एक जिक्र पढ़ना मकाम है, लेकिन हाल यानी क्या, उस सिचुएशन में अपने आप को ले जाए जिस सिचुएशन में हजरत यूनुस थे, कोई मदद करने वाला नहीं सिवाय अल्लाह के, उस सिचुएशन को अपने जहन में ले आए तो बंदा मकाम से बुलंद होकर हाल की तरफ चला जाता है। उस सिचुएशन में अपने आप को रखे, हर दुआ इंसान की कामयाब हो जाती है, हर इंसान की ज़िंदगी कामयाब हो जाती है। उस सिचुएशन तक पहुंचने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, आसान नहीं है, रेगुलर मेहनत करनी पड़ती है, कंटिन्यूस मेहनत करनी पड़ती है। एक रात में, दो रातों में, तीन रातों में इंसान कभी भी इस मकाम तक नहीं पहुंच सकता। ग्यारहवें इमाम फरमाते हैं, इन्नल उसूला इलल्लाह सफरुन, अल्लाह तक पहुंचना एक सफ़र है, एक जर्नी है, लॉन्ग लॉन्ग जर्नी है। वहां तक पहुंचने के लिए क्या करूं, एक शब कदर से पहुंच जाऊंगा, का नहीं, ला युद्रको इल्ला बेबिम्तिता इल्लाइल, उस मकाम तक पहुंचने के लिए रेगुलर नमाज शब को अदा करना पड़ेगा। बात पहुंच रही है आप तक, जो मुसलसल नमाज शब पढ़ता चला जाएगा वो अल्लाह की बारगाह से करीब होता चला जाएगा। हम एक शब कद्र में क्या अमाल बजा लाते हैं, सुबह अपना कॉलर सीधा करने लगते हैं, मुझसे बड़ा कोई परहेजगार नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता भैया, एक दो रकात नमाज से, चार दिन नमाज पढ़ने से इंसान कभी भी सफ़र को तय नहीं करता, जब तक अपने वजूद में मलेका ना बना ले, एक आदत ना बना ले, पार्ट ऑफ द नेचर ना बना ले, उस वक्त तक इंसान कामयाबी की मंजिल को तय नहीं कर सकता। मौला कैसे, कौन सा काम है मुझे, कौन से मलेके की तरफ मुझे जाना है, इमाम फरमाते मन कानल वरा ओ सजी तो हो, अगर किसी की फितरत, उसका नेचर, उसका इंस्टिंक्ट वरा के साथ हो, तकवा के साथ हो, प्रोटेक्शन के साथ हो, वो इंसान कामयाब हो जाता है। नहीं, मेरा दिल चाहता है सारी दुनिया मुझे पसंद करे, मैं बड़ा कहलाऊं, मैं मकबूल कहलाऊं, एक्सेप्ट करें लोग मुझे, हर इंसान की ख्वाहिश है नहीं, मुझे लोग एक्सेप्ट करें, लोग मुझे चाहें, मकबूल हो जाऊं, बड़ा हो जाऊं। तो क्या क्या करता है बंदा, जब सही रास्ता नहीं मिलता है तो दूसरे रास्ते ढूंढता है, कभी माल का रास्ता, कभी पोजीशन का रास्ता, कभी पावर का रास्ता, कभी मुमकिन है इल्म का रास्ता भी है, इल्म का रास्ता भी, कभी इंसान इल्म झाड़ने के बाद कहता है मुझे लोग माने, बड़ा कहें, मुझे मकबूल हो जाओ, फेम मुझे मिले, लेकिन इमाम फरमाते ये रास्ते नहीं है। कौन सा रास्ता है, अपने आप को

चलो हेल्प करने की, हेल्पिंग नेचर बन जाए। नहीं, इसे दुनिया आज की ये दुनिया कहती है ना, इसका नेचर देखो हेल्पिंग नेचर है। हेल्पिंग नेचर का मतलब अब कर्म करना इसकी आदत बन चुकी है। याद रखिएगा, कर्म सिर्फ पैसा नहीं, एक मीठा बोल भी कर्म है, हल्की सी मुस्कुराहट भी कर्म है, सही रास्ता दिखाना भी कर्म है, एक लफ्ज सिखा देना भी कर्म है, सलाम में पहल करना भी कर्म है, किसी मोमिन का मुसाफिहा करना भी कर्म है, मर्दों का औरतों का नहीं जी। ये सारे कर्म है, ये एहसान है, आदत बना ले इंसान, हेल्पिंग नेचर उसकी बन जाए, वो जिंदगी कामयाब हो जाती है, उसके दोस्त बढ़ जाते हैं और उसकी तारीफ भी लोग करने लगते हैं। बात पहुंच रही है आप तक? और तीसरा जुमला बस समेट दो अपने मतालिब को, वल हिल्मो खुल्लतहु, सब्र बर्दाश्त टॉलरेंस इंसान की पहचान बन जाए। खुल्ला यानी दोस्त बन जाए, सब्र को दोस्त बना लो, खुल्ला यानी उसके अंदर एक आदत सी बन जाए, उसके दिल में ये चीज़ें शामिल हो जाए कि वो सब्र कर लेता है। दुनिया वाले ये कहते हैं, कहने वाले कहते हैं तुम्हारा काम करना है करते चले जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे रसूल से कहा वस्बिर लिमा यकूलून, अगर वो नहीं कहेंगे तो मर जाएंगे, अगर तुम काम नहीं करोगे तो अधूरा रह जाएगा। उनकी जबान तुम बंद नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपने काम को छोड़ नहीं सकते। कहने वालों को कहने दीजिएगा तुम अपना काम करते चले जाओ। हिल्म और सब्र को दरहकीकत इंसान अपनी आदत बना ले, अपना रूटीन बना ले। घर से निकलेंगे तो हमारी तबीयत के मुताबिक रास्ता नहीं होता है। घर से निकले ट्रैफिक जाम लग गया, बंदा चिल्ला रहा है होल्ड ऑन, मेरे चिल्लाने से ट्रैफिक खुलने वाली नहीं है। घर से निकले बारिश शुरू हो गई, बंदा चिल्लाता आज क्या हो गया, बदबख्त हो गया, नहीं मेरे चिल्लाने से बारिश रुकने वाली नहीं है। जमाना मेरे मुताबिक हो ऐसा होता नहीं है। इमाम ने फरमाया जमाना तुम्हारी चाहत के मुताबिक नहीं होगा, जमाना अल्लाह की चाहत के मुताबिक चलेगा। तुम अपने आप को अल्लाह के हवाले करो, थोड़ी देर सब्र करो, रास्ता भी खुलेगा, बारिश भी रुकेगी और तुम्हारा बिजनेस भी आगे बढ़ जाएगा। वल हिल्मो खुल्लतहु, गुस्सा करने का नुकसान क्या है? गुस्सा करने वाला, इस जुमले को याद रखिएगा, मैं भी याद रखने की कोशिश करूँगा, कभी कभार दिल चाहता बहुत चिल्लाएं तो गुस्सा करना सा है। ये जुमला सुन लीजिएगा उरफा का, बुजुर्ग उलमा का, गुस्सा पहले आदमी को जलाता है, फिर लफ्ज़ों को जला देता है, फिर किरदार जला देता है, उसके बाद रिश्ते जला देता है। गुस्सा खुद को जलाता है, बाद लफ्ज़ों को जला देता है, उसके बाद कैरेक्टर को जला देता है, उसके अड्डाएंद रिश्तों को जला देता है। जहाँ आग हो वहाँ क्यों जाए बंदा। वल हिल्मो खुल्लतहु, सब्र बर्दाश्त करो, सब्र इख्तियार करो, आदत बना लो, तुम्हारी ज़िंदगी कामयाब हो जाती है। हेल्पिंग नेचर हो, नहीं इंसान के लिए प्रोटेक्शन का हमेशा ख्याल रहे, नो कहना सीखो, और तीसरा सब्र की आदत डाल लो, सब्र की आदत डालो, ये बंदा बड़ा साबिर है। कुरान ने बाज़ अनबिया के लिए कहा साबिरन, ये बहुत ज़्यादा सब्र करने वाले। इतनी खूबसूरत ये सिफत है, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा मैं भी सब्बार हूँ। ये कभी कभार खूबसूरती होती है ना, बात सिफतों को अल्लाह कहता मैं भी हूँ। तौबा करने वो तौबा करना अल्लाह को इतना पसंद है बंदे का, अल्लाह कहता मैं भी तवाब हूँ। माना अलग है, अल्लाह की बारगाह में माना अलग हो जाता है, लेकिन इतना लफ्ज़ इतना खूबसूरत है, अल्लाह कहता आना आना तवाबुर रहीम या हुआ तवाबुर रहीम, अल्लाह तबारक व तआला मैं भी सब्बार हूँ। अल्लाह को बहुत पसंद है सब्र करना। अल्लाह का सब्र करने वाला का मतलब सब्र की तौफीक देने वाला, सब्र करने वालों को अज्र देने वाला है। माना अलग बदल जाता है लेकिन लफ्ज़ खूबसूरत है, अल्लाह ने कहा मैं भी सब्बार हूँ, मैं भी तवाब हूँ, और लफ्ज़ इतना खूबसूरत है माफ़ करना, अल्लाह कहता मैं भी गफ्फार हूँ, और शुक्र करने का लफ्ज़ इतना खूबसूरत, अल्लाह कहता मैं भी शकूर हूँ या शाकिर हूँ। तो ये लफ्ज़ खूबसूरत है, अल्लाह ने कहा मुझे भी चाहिए ये लफ्ज़। तो जो लोग ये काम करते हैं, वरा इख्तियार करते हैं, करम इख्तियार करते हैं, सब्र इख्तियार करते हैं, मिलता क्या है? हम तो बग़ैर मिलने के कोई आगे बढ़ा कदम आगे नहीं बढ़ाते जी। हम लोगों से भी मिलते हैं तो कोई ख़ास वजह होती है, अभी तो इलेक्शन ख़त्म हो गया।

लोगों से भी मिलते मुझे ऐसा लगता था वो अभी जरूर वो आ रहा है बंदा मुझसे वोट मांगेगा, पहले ही पता चल जाता तो मैं पहले ही कह देता मेरा वोट नहीं है जी जरूर, क्योंकि आदमी ये होता है जब मिलता है किसी से तो जाहिर सी बात है मिलेगा क्या, वो देगा क्या, मुझे मिलेगा क्या, मेरे नसीब में क्या है। तो जी इमाम जानते हैं इंसान की फितरत से वाकिफ़ हैं, जो वरा इख्तियार करेगा, करम इख्तियार करेगा, तसब्र इख्तियार करेगा, अल्लाह उसे दो चीज़ें अता करेगा, उसके दोस्त बढ़ते चले जाएंगे, उसकी तारीफ कम्युनिटी में बढ़ती चली जाएगी। हमें तारीफ के हम भूखे हैं, हम तारीफ़ के भूखे हैं। एक मौलाना को वाह वाह ना बोलें तो मौलाना ज़्यादा नहीं पढ़ता है, शायर के लिए नारा ना लगाएं तो वो गिला करने लगता है, आप कहाँ में पढ़ रहा हूँ, आप कहाँ बैठे हुए हैं, क्या मजमा सो गया है, क्या यहाँ नारा बिदती हो गया, पता नहीं क्या क्या जुमले कह देते हैं जी। इंसान तारीफ़ का प्यासा होता है, भूखा होता है, लेकिन रास्ता वो नहीं है। इमाम फरमाते हैं ये रास्ता इख्तियार करो, तुम्हारे दोस्त भी बढ़ जाएंगे और तुम्हारी तारीफ़ भी लोग करने लगेंगे, तुम्हारी तारीफ़ करने लगेंगे। तारीफ़ वो जो दुश्मन की ज़बान से निकले, तारीफ़ वो जो दुश्मन की ज़बान से भी निकले। टाइम ख़त्म हो गया मेरा। ग्यारहवें इमाम को कैद खाने में रखा गया, जिंदा प्रिजन में रखा गया, और बड़े ही सख्त मिजाज हार्ड हार्टेड जेलर्स को रखा जाता था ताकि इमाम को टॉर्चर करें, इमाम को सताएं। तो जो भी जेलर आता वो बदल जाता, वो इमाम के अखलाक को देखकर उसका तरीक़ा बिहेवियर बदल जाता। एक मरतबा दो बड़े सख्त मिजाज जेलर्स को बुलाया गया दूर दराज इलाके से, जो इमाम से नाआशना थे, इमाम से आगाही नहीं रखते थे, उनको रखा गया ताकि इमाम को वो मुसीबत में डाले, तकलीफ़ पहुँचाए। एक मरतबा बनी अब्बास का एक कमांडर था वहाँ पर, कमांडर देखने की उसे शिकायत मिली कि ये जेलर्स जो है वो इमाम को तकलीफ़ नहीं पहुँचा रहे हैं वैसी जैसी होनी चाहिए। तो वो गया और देखने के लिए, देखने के बाद उसने जेलर से पूछा, दोनों जेलर से पूछा, तुम इमाम को परेशान क्यों नहीं करते, तुम इमाम को मारते क्यों नहीं, इमाम को टॉर्चर क्यों नहीं करते। कितने सख्त मिजाज लोग थे, कितने सख्त मिजाज लोग थे। वाकयन अगर इंसान तारीख पढ़ता है ना, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो दोनों जेलर्स ने कहा, जो हार्ड हार्टेड थे, नाशना थे इमाम से, उन्होंने मिलकर कहा, जुमला सुन लीजिएगा, मिलकर कहा, इस बंदे को हम सताएं तो कैसे सताएं, ये तो दिन में रोज़ा रखता है, रात में नमाज पढ़ता है, बात करता है तो कुरान की आयतों से बात करता है। इसके बाद का जुमला जेलर्स कह रहे हैं, जब हम इसको देखते हैं हमारे बदन में लर्जिश आ जाती है, हम काम जा, कितना रोब है इसके चेहरे पर, कितना नूर है इसके चेहरे पर, कितनी पाकिजगी है इसके चेहरे पर। कमांडर कहता है ये क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, जवानी है इमाम की, उस जवानी के आलम में इतना खूबसूरत किरदार, इतना खूबसूरत अखलाक, किसी बुजुर्ग आलिम दीन ने इस वाक़े के ज़ेल में लिखा, तारीफ वो जो दुश्मन करे। वो जेलर्स होते हैं ना, जेलर्स तो हार्ड हार्टेड होते हैं, उनका मिजाज ही ऐसे होता है, वो परेशान करें, उनका काम परेशान करना है। और वो इमाम का अखलाक कितना बड़ा था कि जो थान कर आए थे इमाम को परेशान करने के लिए वो बदल गए। इसलिए बुजुर्ग आलिम दीन का जुमला ये है, इमाम ने कहा कुछ नहीं, इमाम की जबान बंद थी लेकिन इमाम का किरदार बोल रहा था, इमाम की ज़बान तो बंद थी, इमाम का किरदार बोल रहा था। अखलाक में जो खुशबू है, उस अखलाक की खुशबू से दुश्मन भी असीर हो जाता है, दुश्मन भी अपना मिजाज बदल लेता। ये हमारे इमाम है, सलाम हो इन इमामों पर और सलाम हो इन इमामों के किरदार पर। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए कि हम ग्यारहवें इमाम के नक्श कदम पर चल सकें और आपके नक्श कदम पर चल कर आखिरी इमाम के हकीकी माना में आशिको नासिर बन सकें इंशाअल्लाह। दुनिया हमारी दुआओं का इंतज़ार कर रही है, कई मुल्कों में परेशानियाँ हैं, दुश्मन के प्लानिंग, दुश्मन के हरबे, दुश्मन के साजिशें समझना दुश्वार है। लबनान पर परेशानी, लबनान में परेशानियाँ हैं,
فلسطین میں پریشانیاں ہیں، ایران کے خلاف منصوبے بنائے جا رہے ہیں، یمن کے خلاف منصوبے خطرناک بنائے جا رہے ہیں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے اخلاق